I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: अच्छा।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
2: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
1: कपड़ा।

0: तो सुनिए दूल्हा मियां, ऐ दूल्हा मियां तुमको सेहरा पढ़ रहा हूं मैं आपका,
1: सेहरा पढ़ा जा रहा
0: है। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत ये शादी।

के डायरेक्टर साहब जनाब भाई असरार सर, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी सुने तवज्जो।

0: मैं इनकी शादी की इन्हें आज मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मेरा कहना है क्या दूल्हा मियां, खुद आना पड़ेगा आपको। खूब ये
1: खुद आना पड़ेगा दूल्हा मियां आपको, और चेहरे का इनाम लेकर आना पड़ेगा।
0: नौशमी आएंगे अभी।

हमारे दूल्हा मियां ने तकरीबन 2000 रुपए हमें शेरे का नजराना अपने हाथों से दिया। दूल्हा मियां के जो भाई हैं छोटे, मैं उनसे भी तवज्जो चाहता हूं और जितने भी उनके और भी अजीज व करीब जो रिश्तेदार यहां तशरीफ लाए हैं शादी में और उर्स में, आज देखिए बड़ा अच्छा खुशी का मौका है। उर्स मुबारक की महफिल भी है और शादी का जो मौका है उस मौके पर हम शेरा भी पढ़ रहे हैं। दूल्हा मियां के वालिद साहब, चचा, ताया, फूफा, मामू, दादा, दादी, वालिद और जो भी दोस्त लोग आए हुए हैं दिल्ली से और जहां जहां से भी, मैं सभी से तवज्जो

0: चाचाओं का या
1: भाई नाम लेने पे आऊं तो 50 नाम है, कोई अच्छा माने या बुरा माने। हाँ मियां हुजूर का नाम ले दूं, वालिद साहब है दूल्हा चाचा। अच्छा अच्छा हजरत हजरत सज्जादा नशीन सईदैन मियां, बाबू सईदैन मियां साहब सज्जादा नशीन। मैं बाबू सईदैन मियां जो सज्जादा नशीन है, ये शेरे का आखिरी शेर उनकी नजर कर रहा हूँ।

हमें कोई भी साहब उनसे हमें जेरह का नाम ले आए। जी जी नायब सज्जादा नशीर चचा है वो हमें सेरे का इनाम भिजवा रहे हैं, शायद हजरत लेकर आ रहे हैं ये इनाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात पर? अच्छा ये पीछे लड़के

संवारा है राजू खान जी ने, ये आवाज हाजी तस्नीम आरिफ की है और ये पेशकश है तस्नीम आरिफ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की। सामईन हजरात, इस वाकये को सुनकर आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये जंग ये कूरेजी क्यों हो रही है। तो लीजिए मुलायदा फरमाइए, ये दास्तान बैतुल मुकद्दस।

प्रोग्राम की समाप्ति का वक्त हो चुका है. उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे टेक्नीशियन बड़े होनहार इब्राहिम एब्रम्स का, जिन्होंने मुझे प्री रिकॉर्डिंग के लिए मदद की. और आप हमारे सुनने वाले, आपकी दुआएं और आपकी हौसला अफजाई. ये साल का पहला हफ्ता है 2025 का, तो आप दुआ है रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे और आपकी हर दुली मुराद, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी हर दिली मुराद को पूरी करें. इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह अगर जिंदगी बाकी रही तो अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे. इसके बाद आप सुनेंगे सलामी तस्लीम आरिफ के साहब. इसके बाद आप सुनेंगे सलामी तस्लीम आरिफ साहब की आवाज़ में. फ़ी अमान अल्लाह, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह खैर.